सुप्रभात अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 1 जुलाई 2026, महीने का पहला दिन, बुधवार, अषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्य उदय हुआ है 5:24 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:29 पर।

जितनी देर यह जीवन चल रहा है, बंधनों से छुटकारा पालो, और वो संभव होगा तब जब ब्रह्म मिटेंगे। ब्रह्म तब तक नहीं मिट सकते जब तक कि ज्ञान के उजाले के कारण अज्ञानता का अंधकार नहीं मिट जाता।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, घर घर की आवाज, रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो। पेश है कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 10। पेश करेंगे आरजे किरनी।
2: सभी श्रोताओं को किरनी का प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक नया अंक पहलू और गीत का लेकर आई हूँ। चलते चलते कुछ सपने भी साथ ले चलो, हर कदम पर खुद से ही कर दो एक नया वादा।

दोस्ती एक मीठा शहर है, दोस्ती एक मीठा सफर है, दिल से दिल मिलते हैं हर कदम पर और एक दूसरे का साथ निभाते हैं।

बड़ी दूर से आए हैं कहानी लेकर साथ, दिल की बातों का सिलसिला है ये अनजाने रस्ते का राज़।

साथी रे जिंदगी की राहों में, चलते रहो खुशियों में गम में, हमेशा साथ निभाते रहो, हर कदम पर साथ चलते रहो।

रोशन चेहरे में खिलती है मुस्कुराहट के फूल, दिल में छुपी है खुशी और आंखों में चमक का राज।

जुल्फों में बसी रात की बातें, चांदनी में खो जाए हमारे सारे ख्वाब। जुल्फों में बिखरी है रातों की रोशनी, तेरी जुल्फों का जादू है ये हर दिल को बाई।

इसके साथ ही आज के पहलू और गीत का अंक यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, और अपना फीडबैक 90.0 MHz पर देते रहिए।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 10, पेश किया आरजे किरने ने, रिकॉर्ड एडिट किया दीपक कश्यप ने, निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: You are listening 90.0 FM Radio with a Star, Hum Safar Zindagi Ka.
1: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। पॉजिटिव स्टोरीज की श्रृंखला में लेकर आई हूँ एक और कहानी जिसका शीर्षक है कुदरत के दो रास्ते। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त आरजे शिवानी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर की ओर देखा, बहुत दुख हुआ। वह भाग कर गया, पास ही एक दुकान से बूट लेकर आया और कहा, बेटा बूट पहन ले। लड़के ने फटाफट बूट पहने, बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़ के कहने लगा, आप भगवान हो? वह आदमी घबरा कर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ। फिर लड़का बोला, तो जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात को ही भगवान से अरदास की थी कि भगवान जी, मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लेकर दे दो। वह आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया, पर वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़ कर जाओ, साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इस कहानी का मोरल है, जितना हमसे हो सके उतना हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, धन के माध्यम से या नैतिक रूप से। अगर आप भी कहानी लिखते हैं जो मौलिक है, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अगर हमें वो कहानी अच्छी लगी तो हम अपनी आवाज देकर उसे श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। अब लेती हूँ मैं आपसे विदा, मिलेंगे अगली पॉजिटिव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो वितस्ता, खुश रहिए, खुशहाल रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।
2: توشو بوزان اف ام 90.0 ریڈیو ویتستا، ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنین پسندید بات۔ آپ نے ٹیون ان کیا ہے اف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کی زندگی کی روانی۔ للیشوری، جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے، 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھیکا تھی۔ انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون، آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے۔ ان کی وانی میں بھکتی، درشن اور مانوی سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے۔ للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے، باہری اڈمبروں میں نہیں۔ شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک ارجا، ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے۔ کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن، چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے۔ للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری، کے واک یعنی وچن یا دوہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا، آتم گیان، پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے۔ یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں۔ ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا रास्ता आसान कर देती हैं। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
3: आज का जो ललवाक मैं आपको बताने वाला हूँ ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और हमारे को जीवन को जीने की कला के बारे में बताता है। कश्मीरी में ये ललवाक ललदित कहती है, खन खन करान कुन्नो वातक, खन खन करान कुन्नो वातक, नखन गसक अहंकारी, सुमई खे माल्य सुमई आसक, स्वमिखन मुसरनई बरंदेरी। मतलब ललदित कहती है कि हम जीवन में या तो भोग विलास में इंडल्ज हो जाते हैं या हम त्याग, यानी जीवन की डाइकोटमी है, या तो एकदम जीवन में भोग कंज्यूमरिज्म उपभोगता स्वार्थ इसमें इंडल्ज हो जाते हैं या एकदम ऑपोजिट हम जीवन में त्याग संयम तप उपवास या दान इस और इंडल्ज हो जाते हैं। मतलब जीवन की एक डाइकोटमी है, या तो आप एक तरफ हैं या एक तरफ हैं। परंतु भोग की तरफ जब व्यक्ति जाता है तो भोग की तरफ जाते जाते उसे कितना भी वो जीवन में पाले वो अतृप्तता हमेशा रहती है, वो डिससेटिस्फेक्शन हमेशा रहती है। आप एक चीज ले लो तो आपको दूसरी चीज की कामना हो जाती है, आपको दो चीजें मिल जाए तो आपको चार चीजों की कामना हो जाती है। यानी लाइफ का जो पूरा वर्तुल है वो जो सर्कल है वो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ कमी हमेशा जीवन में खलती रहती है। आप जिंदगी के टॉप मुकाम पे भी पहुंच जाएं तब भी आपको कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कमी महसूस होती रहेगी। यानी जितना पाओ उतना ही और चाहो, यानी पाओ कभी आपको चाहत खत्म नहीं करता। और दूसरी तरफ जब हम त्याग का जीवन अपनाते हैं, जब हम सैक्रिफाइस का जीवन, जब संयम का जीवन अपनाते एकदम ऑपोजिट तप का जीवन अपनाते हैं, उपवास का जीवन अपनाते हैं और साथ ही में हम लोग दान का जीवन अपनाते हैं, तो ये भी हमारे जीवन में एक विचित्र प्रकार का परिवर्तन लाता है, हमें अहंकार भर देता है। एक तरफ से भोग हमारे जीवन में लालसा और लोभ भर देता है, लेकिन दूसरी तरफ वाला जीवन हमारे जीवन में अहंकार भर देता है। हम इस बात के अहंकारी हो जाते हैं कि हम कुछ दान कर रहे हैं, हम कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं। तो दोनों चीजों के बारे में ललदत कहती है कि दोनों चीजें सही रास्ते नहीं है। वो कहती है सोमई के माले सोमई आसक, यानी सोमई मतलब बैलेंस के साथ जीवन में रह, यानी न ज्यादा खा न ज्यादा त्याग कर। यानी हमारे यहाँ पे एक शब्द है वॉलंटरी पॉवर्टी, यानी उतना ही लो। वॉलंटरी पॉवर्टी का मतलब गुर्बत नहीं है, वॉलंटरी पॉवर्टी का मतलब है उतना ही जीवन में लो जितने जीवन में आपको आवश्यकता है। होर्डिंग मत करो, एक्यूमुलेशन में मत जाओ। तो ये जो संतुलन वाला शब्द ललदित इस्तेमाल करती है सोमई खेमाले सोमई आसक, यानी ये संतुलन वाला जो शब्द है इसमें भोग त्याग और ये एक तरफ इसकी बिल्कुल कमी और दूसरी तरफ सैक्रिफाइस यानी बैलेंस। यानी जिस समय हम बैलेंस को प्राप्त हो जाते हैं, यानी जब हम लोग न ज्यादा खाना और न ज्यादा त्याग करना, एक बैलेंस जीवन जितनी आवश्यकता है उतने में चलते हैं, तो जीवन में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है और वही ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन की एक क्रांति बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है कि न हम ज्यादा भोग दिखावे में, न तनाव में, न बर्नआउट में और ना ही हमारे जीवन में किसी प्रकार का डिससेटिस्फेक्शन, तो होता क्या है एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाता है। जब आप बैलेंस में चलते हो, जब आप बिल्कुल ऐसी अवेयरनेस में चलते हो कि मुझे न ज्यादा चाहिए न मुझे ज्यादा त्याग करने की आवश्यकता है, तो आप देखते हैं कि हमें एक आंतरिक सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें एक आंतरिक जॉय मिल जाता है, हमें भीतर से एक मुक्ति का एहसास होना शुरू हो जाता है, एक फ्रीडम ऐसी होती है जो हमें सच्चा सुख देती है।

गीतों पे मबनी प्रोग्राम पेश है। धीरे धीरे अब ये सारे मौसम बदलते रहे, पर तुम्हारे लौटने के इंतजार का मौसम इन बादलों में कहीं खो सा गया है। मैं हूं रमेश मराठा, नमस्ते।

तेरे इंतजार की चाहत में लुट गई, खामोश हो गई, फना हो गई, भीगती बारिशों में चिल चिलाती धूप, सुबह शाम रात की चुप्पी में मैंने तेरे लौटने तक इंतजार किया।

सी आहट होती है तो दिल कहता है, कहीं वो तो नहीं। इन हवाओं के झोंकों में तुम्हारे बदन की खुशबू से मेरी मायूसी टूट जाती है और आंखें नम हो जाती हैं। शायद तुम आओगे, चलोगे मेरे साथ सफेद बर्फ की चादर पे, पिछले मौसम की तरह।

खामोशियों को मुअत्तर करती हैं। बस तुम्हारी आवाज सुनते हैं और सुकून पाते हैं, मेरे हर दर्द की दवा बन जाते हैं आप। जाने अनजाने जब आईना देखते हैं तो तुम नजर आते हो, तुम ही नजर आते हो। जानता हूं ये समंदर है, इसमें तैरा नहीं जा सकेगा, पर न जाने इसको नापने की ख्वाहिश उभरती क्यों है। जानता हूं तुम्हें छूना एक ख्वाब की तरह है, पर फिर भी क्यों तुम्हें अपनी नींदों में शामिल करता हूं शब रोज़।

तन्हा, यूं ही तन्हा तन्हा। साथी थे पर छूट गए, अब ये रह गुजर भी है हमारी ही तरह तन्हा तन्हा। बस हम तलाशते हैं वो साथी जो कभी हमारे अपने थे, सिर्फ

पलों के लिए मुझे अपनी पनाहों में थोड़ी सी जगह देते, मुझे सहलाते, मुझसे प्यार करते, मुझे अपनी बाहों में लेते, मेरा हाथ थामते। मखमली मौसमों के संग चलते, मखमली मौसमों के संग चलते, मेरे अरमानों को गुलजार करते, मुझे अपना समझते, मगर ये हो न सका, ये हो न सका। काश तुम रोक लेते हमें

फिल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम आप सुन रहे थे रमेश मराठा के साथ। दोस्तों, आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा जरूर। चाहेंगे अब आपसे इजाजत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: पेश है कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 11, प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी।
1: पहलू और गीत का एक और अंक लेकर मैं हूं आपके साथ किरणी। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम का पहलू है जिंदगी, और इसी पर आधारित आप नगमे भी सुनेंगे। बहुत पहले से इन कदमों की आहट जान लेते हैं तुझे ऐ जिंदगी, हम दूर से पहचान लेते हैं।

0: इसके साथ ही आज के पहलू और गीत का अंक यही समाप्त होता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। सुनते रहिए FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहलू और गीत, एपिसोड 11। प्रस्तुत किया RJ किरनी ने, एडिटिंग दीपक कश्यप, रिकॉर्डिंग व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

प्रस्तुत है कार्यक्रम गुप्तगु एपिसोड 5। आज के आमंत्रित मेहमान हैं कश्मीरी फोक सूफी गजल एवं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर श्रीमती नीरजा पंडित जी। सहयोग दिया किरणी दास ने। रिकॉर्ड निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता भारत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, लेके आया हूं आज कार्यक्रम गुप्तगु का एक और अंक। गायन एक सामान्य शब्द है जो संगीत गाने की क्रिया को दर्शाता है, जबकि सूफी गायन एक विशेष प्रकार का भक्ति संगीत है जो सूफी संतों के आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित होता है। सूफी गायन में सूफियों की रहस्यात्मक भावनाओं, प्रेम, विरह और भक्ति को व्यक्त किया जाता है। कवाली सूफी संगीत का एक रूप है, लेकिन इसमें गजल, तराना और धमार जैसे अन्य रूप भी शामिल होते हैं। आज का ये विशेष कार्यक्रम गुप्तगु एपिसोड 5 समर्पित है उन सुरों को जो दिल को छूते हैं, आत्मा को मंत्र मुग्ध करते हैं। हमारे साथ है राष्ट्रीय स्तर की गायिका, एक सूफी फनकार और खास तौर पर ये आवाज जो कश्मीर घाटी की सरजमी से उठकर देश और दुनिया के दिलों तक पहुंची है। स्वागत करते हैं आज के आमंत्रित मेहमान का। स्वागत है श्रीमती नीरजा पंडित जी, आपका आज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी, आपने वितस्ता रेडियो पे मुझे आमंत्रित किया है और बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सुरमई यात्रा की। सबसे पहले नीरजा जी, आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस स्टूडियो में आपके आने से। आज हमारा ये स्टूडियो पावन हो गया है।
1: नहीं, मैं ये कहूंगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आज मौका मिला है आपके इस पवित्र जगह पे, आपके स्टूडियो में आने का एक अवसर मिला है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दें ताकि हमारी श्रोता आपको और अच्छे से जान सके।
1: मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ, नीरजा पंडित के नाम से जानी जाती हूँ। पहले मैं नीरजा मुंशी थी शादी से पहले, और कश्मीर में थी। कश्मीर में एक छोटी सी जगह है श्रीनगर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पे, जहाँ की हमारी शिव योगिनी ललेश्वरी है, उसी जगह को मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ की हवा खातून भी है
0: जी।
1: और पामपुर उस जगह का नाम है, और पामपुर बहुत पॉपुलर है, फेमस है काफी चीजों के लिए, जिसमें केसर उगता है
0: जी।
1: तो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो सब जानते हैं, तो मैं उस जगह को बिलोंग करती हूँ।
0: सभी श्रोताओं को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि रेडियो वितस्ता हमेशा कश्मीर के साथ जुड़ा है, क्योंकि इसका जो वजूद है वो कश्मीर के साथ जुड़ा है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने श्रोताओं को कश्मीर की उन हसीन वादियों से और वहाँ की जो खास बातें हैं उनके साथ आपको जोड़ूं, और आप हमारे साथ जुड़े और हम रेडियो वितस्ता के माध्यम से आपकी जिंदगी के हम सफर बन पाए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे पहले मेहमान है वो गायक जिन्होंने मंचों, फिल्मों और एल्बम्स में अपनी आवाज से जादू बिखेरा है। सबसे पहले आप ये हमें बताएं कि संगीत में आपका सफर कैसे शुरू हुआ।
1: एक्चुअली मुझे संगीत का जो एक हेरिटेज होती है ना, वो मुझे मेरी माँ से मिली है
0: जी।
1: और उनको उनकी माँ से मिली थी
0: जी।
1: तो मेरी माँ जब कश्मीर में फंक्शंस में गाया करती थी, फैमिली फंक्शंस में, मैं बहुत छोटी थी तो मैं उनको देखती थी और मैं भी इंस्पायर होती थी। मुझे कुछ नहीं पता था, बहुत छोटी थी, और मुझे वो आकर्षण होता था उनके संगीत की तरफ, और मैं उनके साथ बैठ के उनको फॉलो करने की कोशिश करती थी, उन गानों को गाने की कोशिश करती थी। हमारे कश्मीरी फोक म्यूजिक में तुम्बक नर एक इंस्ट्रूमेंट है जो शादियों में बजता है, जैसे ढोलक है पंजाबी में, तो वैसे वो तुम्बक नर मैं कोशिश करती थी बजाने की। छोटी सी थी बट एक जिद मेरी थी, वो मुझे थोड़ा बहुत याद है। मैं मम्मी के बगल में बैठ के उन गानों को रिसाइट करने की कोशिश करती थी और गाती भी थी। फिर छोटे से ही शुरुआत हो गई थी मेरी, और फिर स्कूल के फंक्शंस में गाना गाना, पार्टिसिपेट करना, और उसमें ये था कि कश्मीर रेडियो से बजते थे बहुत अच्छे अच्छे गाने उन दिनों, लाइट म्यूजिक, फोक म्यूजिक तो था ही था, लाइट म्यूजिक में हमारे वरिष्ठ जो गायक थे, जिसमें कैलाश मेहरा साधु जी हमारे, वो सारे मेरे गुरु समान हैं, और शमीमा देव जी थी, आरती तिकू जी थी, कई सारे सिंगर्स थे जो गाया करते थे, और उन गानों को भी मैं सुन सुन के रिसाइट करती थी और फंक्शंस में गाती थी स्कूल के। वहां से मुझे एनकरेजमेंट मिलती रही और सब बोलते थे तो बिल्कुल वैसे ही गाती है। और बचपन में एक ग्रेस्पिंग पावर भी होता है
0: जी।
1: तो उन गानों को मैं एग्जैक्टली उसी ट्यून में उसी तर्ज में गाने की कोशिश करती थी और वो अच्छा लगता था सबको। और फिर एनकरेजमेंट मिलती रही टीचर्स से कि नहीं तुम सब्जेक्ट ले लो, बिकॉज कश्मीर में सब्जेक्ट नहीं था स्कूल लेवल पे। तो जब 10th पास किया फिर मैंने म्यूजिक सब्जेक्ट लिया कॉलेज में और अपने गुरुजी से पंडित शंभुनाथ सोपरी जी जो कश्मीर के प्रख्यात म्यूजिशियंस में से रहे हैं, ही इज द मास्टर ऑफ क्लासिकल वर्ल्ड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, एंड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर कॉलेजेस में, कॉलेज लेवल पे उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को इंट्रोड्यूस किया था। तो मैंने सब्जेक्ट लिया और उनसे सीखना भी शुरू किया क्लासिकल म्यूजिक, बेसिक ट्रेनिंग जो होती है ना संगीत की। बस वहाँ से एक सीखने का सफर शुरू हो गया, फिर साथ साथ रेडियो टीवी वो सब भी
0: साथ साथ चलता रहा। क्या मैं मानूं आपको ये विरासत में संगीत और जो संगीत के साथ आपकी जिंदगी चल रही है, जो आपकी संगीत की यात्रा है
1: जी,
0: तो क्या हम माने कि ये आपको विरासत में मिली है?
1: विरासत में तो मिली थी, हमारी फैमिली में सब गाते हैं, सबको भगवान ने वो वरदान दिया है गाने का,
0: सरस्वती माँ का आशीर्वाद है।
1: पर मुझे एक जब मैं आपको बोल रही थी कि मैं गाने जब गाती थी स्कूल में, रेडियो के गाने जो बजते थे उसमें पंडित भजन सोपुरी जी की नई नई कंपोजिशंस और बहुत मुश्किल कंपोजिशंस, और उसको मैं गा देती थी इनोसेंस में ही गा देती थी। बेशक उस वक्त बोल भी आधे समझ में नहीं आते थे, बिकॉज पोइट्री एक पोइट्री होती है, बट बचपन में वो मैं ट्यून को पकड़ती थी, उन कंपोजिशंस को मुझे कुछ अट्रैक्शन मिलती थी और मुझे लगता था मैं भी कभी गाऊं रेडियो पे, मैं भी कभी दूरदर्शन में गाना गाऊंगी। ये एक वहीं से मुझे एक स्पार्क जैसी भगवान की तरफ से था कि मुझे कुछ करना है म्यूजिक में। तो भगवान की कृपा रही और माता पिता का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद रहा, और मैंने कॉलेज टाइम से ही फिर शुरू किया सीखना क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड सब्जेक्ट भी लिया, और प्लस रेडियो में ऑडिशन करके शुरू किया मैंने एक प्रोफेशनल सिंगिंग। जी। तो बहुत हार्ड वर्क होती है तभी जब हम इसमें पूरा डिवोट करेंगे अपने टाइम को। विरासत तो थी बट एट द सेम टाइम इंटरेस्ट और उसमें हार्ड वर्क।
0: आपने अपने इस सफर को खुद अपनी मेहनत से यहाँ तक बनाया है।
1: फिर मुझे ये भी नहीं पता कहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं है, लिटरली लगता है जो मुझे पाना चाहिए था। बट ठीक है, डेस्टिनी में जितना लिखा होता है वो मिलता है हमको
0: जी।
1: ये था कि रेडियो टीवी के करने से काफी भजन जी के अंडर हम काम करते थे, भजन सोपोरी जी जो मेरे गुरुजी भी है, मेरे गुरु भाई भी है, वो सब जानते हैं उनको, इंटरनेशनल वर्ल्ड फेम आर्टिस्ट रहे हैं वो संगीत के, संतूर माएस्ट्रो, एंड देन कश्मीरी फोक म्यूजिक को उन्होंने कैसे रेवोल्यूशन लाया और उन धुनों को लेके मैं इंस्पायर होती थी। उनका कनेक्शन मेरे साथ है, वाई, बिकॉज मैं उन्हीं धुनों को सुन सुन के इंस्पायर होती रही और मैं अट्रैक्ट होती रही टुवर्ड्स दिस लाइट म्यूजिक, कश्मीरी म्यूजिक एंड सॉन्ग्स, जो मैं फिर शुरुआत भी हो गई रेडियो कश्मीर से और दूरदर्शन से।
0: हम आज गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज आप हमारे स्टूडियो में हैं और हमारे श्रोताओं से आज मुखातिब है। आपसे बहुत सारी बातें जानेंगे और श्रोताओं की जो जिज्ञासा है, उम्मीद है कि उन सारे सवालों के जवाब हम नीरजा जी से लेंगे, पर मैं चाहूंगा कि हमारी श्रोता इंतजार कर रहे होंगे आपके कंठ से सुनने के लिए।
1: जरूर जरूर
0: जी।
1: मैं एक गुरुस्तुति से ही शुरू करूंगी, शुरुआत उन्हीं से मैं करना चाहूंगी
0: जी, जी।
1: एक छोटी सी सूफी भजन से, पॉपुलर भजन है ये, नुसरत फतेह अली जी ने गाया।

0: बहुत खूब निर्जा जी, आपने अभी कश्मीर की बात की, कश्मीर के बारे में आपने बोला, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, हम सब के लिए, चाहे हम किसी भी प्रांत में रह रहे हो, हम सब के लिए माँ बोली कितनी महत्वपूर्ण है? क्या हमारी पहचान माँ बोली से ही हो सकती है? हमारे लिए माँ बोली को बचा के रखना, उसका संरक्षण करना कितना जरूरी है, चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो किसी प्रांत की बात हो?
1: भाषा एक ऐसी चीज है, आप कहीं भी दुनिया में चले जाओ, कहीं भी आपको अपने रीजन का कोई दिखता है, जब तक आप उसको अपनी भाषा में बात नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि वो मेरे प्रांत का है या कहाँ का है। जब अपनी भाषा में हम बात करते हैं, किसी भी जगह पे हो हम, तो एक अलग ही अपनापन लगता है
0: जी।
1: तो ये भाषा का एक बहुत बड़ा, हमारे लिए एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है
0: जी।
1: भाषा नहीं तो अंग्रेजी सब बोलते हैं, तो फिर हमारे में और दूसरी जगह से होंगे या प्रांत से होंगे, जो अपनापन हमारी भाषा में बात करने से होता है, तो वो हमको किसी और अंग्रेजी में, नेशनल लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज में नहीं आएगा
0: जी।
1: वो तो सबको करना ही पड़ता है, बिकॉज काम करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वो इंटरनेशनल लेवल के लिए हमको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, वो सब तो करना ही पड़ेगा काम चलाने के लिए। बट जब हमको अपनेपन की बात आती है, तो वहाँ पे हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा से ही हमारी पहचान है। और कश्मीर से निकलने के बाद मैं मुंबई चली गई मेरी शादी के बाद
0: जी।
1: तो हमारे पास कुछ था ही नहीं रिकॉर्ड मेरा, जो मैंने कश्मीर में रेडियो गाने गाए थे, टीवी पे गाने गाए थे,
0: सब कुछ छूट गया था,
1: कश्मीर में ही छूट गया था। और उसको रिवाइव करने के लिए, क्योंकि संगीत मैं कर ही रही थी, कश्मीरी म्यूजिक तो मेरा था ही वहाँ पे, तो उसको मैं कैसे बचाऊं, क्योंकि छूट गया और आगे की जनरेशन तक कैसे हमारी ये मातृभाषा आगे जाएगी
0: जी।
1: तो मुझे म्यूजिक का एक बहुत बड़ा माध्यम लगा, म्यूजिक के थ्रू हम इसको कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं भाषा को। तो मैंने एल्बम्स बनाने शुरू किए, उसको री रिकॉर्ड किए मैंने, जो कश्मीर के पॉपुलर गाने थे, जो मैंने भी गाए थे और जो वहाँ के बाकी सिंगर्स ने भी गाए थे, चूंकि रिकॉर्ड कुछ था नहीं अपने पास, तो उसको रिवाइव करने के लिए मैंने काफी मेहनत की, एफर्ट लगाया और उसको रिकॉर्ड किया। और तो रिकॉर्ड करने के बाद फिर सब जगह जगह मैंने भेजी वो सीडीज, जहाँ जहाँ हमारी कश्मीरी बरादरी थी उनको भेजा मैंने, उनको दिए मैंने सुनने के लिए। और जो बच्चे पैदा हुए थे, जो बड़े हो रहे थे, तो म्यूजिक एक बहुत बड़ा माध्यम है

0: अगर हम कश्मीरी गाने चलाते रहेंगे घरों में, हमारे जो रीजनल गाने हैं, तो हमारे बच्चों के कानों तक पहुंचती है चीजें सुनने को, फिर उनको फिर वो एडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके थ्रू उनकी भाषा उनको समझ में आने लगेगी। मैं छोटी सी एग्जाम्पल अपनी ही दे दूंगी। जब मैं बहुत छोटी थी, मैंने पहले कहा कि मेरे को भाषा का कुछ ज्ञान नहीं था, बहुत छोटी थी, मतलब थर्ड फोर्थ सेकंड से ही इनफैक्ट शुरू किया था। जो मैं गाने गाती थी शमीमा आजाद जी के, कैलाश मेहरा साधु जी के, आरती तिक्कू जी के, मुझे सिर्फ ट्यून पकड़ती थी, भाषा मुझे उस वक्त कुछ नहीं समझ में आती थी। बट जब मैं प्रोफेशनली इसको करने लगी, धीरे धीरे धीरे धीरे जब मैंने रेडियो पे गाना शुरू किया, मैं 11th में थी, छोटी थी, क्लासिकल तो सीख ही रही थी, मगर ये पोइट्री मुझे किसी ने सिखाई नहीं, ये मुझे अपने आप ही फिर इसकी समझ आ गई करते करते करते करते। जब मैंने गाने गाने शुरू किए और मेरी मैच्योरिटी लेवल तो धीरे धीरे फिर इंसान की आई जाती है, और मैंने समझा कि नहीं, ये तो फिर करते रहने से सुनते रहने से, और जितना इसके साथ जुड़े रहो इन गानों के साथ, वो समझ आ गई मुझे। तो मुझे लगा कि ये म्यूजिक के फॉर्मेट में बच्चे सुनेंगे गाने, कश्मीरी गाने चलते रहेंगे, जिसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल मेरा बेटा है, वो भी बचपन से मेरे साथ करता रहा है, सीखता रहा है, सुनता रहा है, और मेरे ये एल्बम्स पे काम उसने भी किया जब वो बड़ा हो रहा था। सिंस उसका म्यूजिक ही उसने अडॉप्ट किया है, म्यूजिक में ही है वो। बट उसको ये बात, उन दोनों बच्चों को, मेरी डॉटर भी है, ये गाने सुनते सुनते उनको कश्मीरी भाषा मैक्सिमम आ गई, जबकि हम घर में भाषा बोलते हैं कश्मीरी, बट म्यूजिक के थ्रू उनको ज्यादा हेल्प हो गई। तो मुझे लगा ये बहुत बड़ा माध्यम है हमारा संगीत, अगर हम कश्मीरी गाने गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे रेडियो पे, उसको एडॉप्ट करेंगे, तो हमारी भाषा जल्दी पकड़ सकते हैं बच्चे।
1: नीरज जी, आपने बहुत सारी भाषाओं में गाया है और अलग अलग संगीतकारों के साथ आपने काम किया है, पर अभी मैं इसी बात पर रहना चाहूंगा, कश्मीरी भाषा है वो हमारे लिए, हमारे संस्कृति के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हम उस कश्मीरी भाषा को समझ पा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लल दिद की बात करूंगा, क्योंकि उनके जितने भी वाक है वो कश्मीरी में ही है
0: जी,
1: तो मैं चाहूंगा कि उसके बारे में आप बताएं।
0: जी, हमारे कश्मीर में तो काफी वरिष्ठ सूफी सेंट्स रहे हैं और बहुत जबरदस्त लेवल के ऊंची अवस्था में रहने वाले सेंट्स रहे हैं, पीरवर रेशवर बोलते हैं, क्योंकि वहाँ काफी सारे गुप्त संत भी थे जो एकदम हाई लेवल के, उसमें से ललेश्वरी भी थी वन ऑफ देम, और वो शिव योगिनी थी, उनको कहा जाता था ललेश्वरी माता। तो मैं उसी जगह को बिलोंग करती हूँ, तो बचपन से उनका वो सब सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, बट सुनते हुए, फिर उनके वाक सुनते हुए, सुने भी हैं, सीखे भी हैं, तो काफ़ी सारे वहाँ के हैं सूफी पोइट्स हैं, और संत परंपरा से जुड़े भी काफ़ी हमारे संत है, तो मैंने कई गाए भी हैं। और अभी आपने ललेश्वरी की बात की है, तो मैं ललेश्वरी का वाक आपको सुनाते हुए फिर एक सूफी गाना ही सुनाऊंगी। सूफी मतलब फिलोसफिकल पोइट्री है जो डोलवाल साहब का है। डोलवाल साहब बहुत बड़े शायर थे, कंपोजर थे, सिंगर थे उस जमाने के, तो उसको मैंने रिकॉर्ड भी किया है मेरे एक एल्बम में, उसका नाम है रिश्वर
1: जी।
0: तो उसमें सूफियों के ही गाने हैं उस एल्बम में, तो ये भी एक गाना है, मैं ललवाक से शुरू करूंगी।

0: मुझे भी उस बचपन के दौर में लिया और उस कश्मीर की वादियों में उन गलियों में आपने मुझे पहुंचाए इस गीत के जरिए जो आपने अभी गाया मेरी और आपकी माँ बोली में। श्रोताओं को जरूर कहना चाहूंगा कि माँ बोली हमारी पहचान है, हमें अपनी माँ बोली को बचा के रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी भाषा हो, क्योंकि हमारी पहचान हमारी मातृबोली से ही होती है। जो हम अपनी माँ से सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा होती है, और चाहे हम दुनिया के सभी भाषाएं बोलें पर हमारी पहचान हमारी मातृभाषा होती है। इस चर्चा को आगे ले जाते हैं और बहुत से हमने बातें करनी है नीरजा पंडित जी के साथ। अभी हम बात कर रहे थे कि आपने अलग अलग भाषाओं में गीत गाए हैं
1: जी।
0: तो जो हमारा प्रांत है इसमें पंजाबी बहुत ज्यादा बोली जाती है और हरियाणवी के साथ साथ पंजाबी गीत गाए और सुने जाते हैं
1: जी।
0: तो मैं चाहूंगा कि इन प्रश्नों के उत्तर के बाद आप एक पंजाबी गीत कोई सा भी आपके मन का हो वो हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
1: जरूर।
0: नीरजा जी, आपसे अगला प्रश्न मैं ये करना चाहूंगा कि सूफी संगीत का महत्व हमारे जीवन में क्या है, आज के दौर में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
1: सूफी मतलब सूफी संगीत तो अभी काफी प्रचलित है। मैं तो ये कहूंगी कि संत परंपरा से हम जुड़े हुए रहे हैं हमेशा। हमारी जितनी भी पोएट्री है वो सब संतों की वाणी है, वो सब सूफियों की वाणी है। तो वही गागा के वही हम यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, उनको ही उन्हीं कलामों को गागा के, तो वो हमारे जीन्स में ही है। सूफियाना म्यूजिक और सूफी म्यूजिक, जो भी म्यूजिक नहीं होता है लिरिकली, मतलब वो पोइट्री जो वहाँ की है
0: जी।
1: ये दुनिया में मुझे लगता है, मैं कई जगह जाती रही हूँ, बाहर इंटरनेशनल शोज के लिए गई हूँ, तो मैंने देखा कि हमारी कश्मीरी पोइट्री इतनी रिच है, हमारी हेरिटेज इतनी रिच है, जो हमारी वहाँ की परंपरा है रिचेस्ट मुझे लगती है हमारी जो भाषा है, और जितने भी हमारे कलाम हैं कश्मीरी, चाहे वो सूफियों के हैं चाहे वो संतों के हैं, तो मैं उस परंपरा को बिलोंग करती हूँ। ये मेरी भाग्य की बात है कि मैं कश्मीर से जुड़ी हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ, तो हमारे खून में ही दौड़ता है वो सब पोइट्री जो हमारी है। जैसे मैंने अभी ललेश्वरी जी की बात करी, एक मिस्टिक पोइट्री है वो, तो आम भाषा नहीं है। तो काफी इनको गाते गाते आपको एक अलग ही रूहानियत महसूस होती है, अंदर एक अलग ही पीस मिलता है, आपको लाइफ के बारे में समझ आती है, फिलोसफी समझ में आती है। और इसमें कोई दीन कोई धर्म की बात ही नहीं है, इसमें एक यूनिवर्सल बात है, एक लाइफ की बात है, एक लाइफ की फिलोसफी होती है इन पोइट्रीज में। तो ये बिल्कुल रिलीजन के परे होती है ये चीजें, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है ऐसी चीजें जो फिलोसफिकल चीजें हैं। उसमें रीजन ये भी हो सकता है कि हमारे गुरुओं के संग में रह के और उनका आशीर्वाद पाते पाते मेरा ज्यादा झुकाव इन्हीं चीजों की तरफ रहा है, मैक्सिमम झुकाव तो मेरे गुरुजी है, मेरी गुरु माँ है, मेरे माता पिता, सबका आशीर्वाद उनका है, और मैं इस चीज को अलग लेवल पे महसूस करती हूँ इन चीजों को गाते गाते
0: जी। जी, तो जैसे आपने कहा तो आज के दौर में सूफी संगीत की प्रासंगिकता जो है वो आज भी है, पहले भी रही है और आगे भी रहती रहेगी,
1: रहना चाहिए। बिकॉज मैं अभी यही बोल रही थी कि ये फिलोसफी लाइफ की, ये पोइट्री जो है ये इतनी रिच है, ये असलियत सिखाती है हमको जिंदगी की, इसमें कैसे चलना है। तो हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा भविष्य हो सकता है अगर वो इस चीज को समझे और इस चीज को आगे, इस परंपरा को आगे चलाएं, ये पोइट्री को गाएं बजाएं और समझे।
0: और कोई यादगार मंच अनुभव आपका?
1: वो तो बहुत सारे हैं, जैसे इवेंट्स में मैं शोज करती रही हूँ काफी सारे, तो पंजाबी भी गाया है, तेलुगु गाया, काफी लैंग्वेजेस में गाया है, गुजराती, मराठी, राजस्थानी फोक मैंने काफी गाए हैं, फिल्मों में गाया राजस्थानी, इवन काफी सारे मराठी में भी गाया है, तो संस्कृत में गाया है, तो वो सब श्लोक्स वगैरह और दुर्गा कवच वगैरह मैंने किया था, तो वो तो चलता रहा है, कमर्शियल काम तो चलते रहे हैं, बट ये है कि पंजाबी भी मैंने गाया है जी।
0: तो आप एक पंजाबी कुछ हमारे श्रोताओं के लिए करें?
1: जरूर, क्योंकि मैं आज हरियाणा में हूँ तो यहाँ के जो श्रोता है उनके लिए मैं एक छोटा सा, ये भी मेरा फेवरेट सूफी गाना है नुसरत फतेह अली जी का है
0: जी।
1: क्योंकि मैं इन सारे लेजेंड्स को सुनती हूँ, उनसे सीखती हूँ, जितने भी सारे हमारे मेरे से बड़े हैं, बुजुर्ग है, मैं रोज ही सीखती हूँ कुछ ना कुछ, तो ये एक मेरा फेवरेट सूफी गाना है।
0: Please.

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। कार्यक्रम चल रहा है गुफ्तगू, और आज हम हमारे देश की और विश्व प्रसिद्ध गायिका से बात कर रहे हैं, और हमारे साथ है श्रीमती नीरजा पंडित जी, जो मुंबई से खासकर हमारे अंबाला के श्रोताओं के लिए इस समय स्टूडियो में है और बात कर रही है। नीरजा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आज के समय में संगीत में जो बदलाव आ रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, संगीत ही नहीं, हमारी जिंदगियों में भी बदलाव तो आता ही है
0: जी।
1: और कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है, तो हर चीज में बदलाव आता ही है, तो हमारी जिंदगियों में भी बदलाव आया है। तो जैसे हमारे संगीत को लेके मैं बात करूंगी, काफी कुछ चेंजेस आ गई, बिकॉज जो जनरेशन अभी बड़ी हो रही है, जो ग्रोइंग जनरेशन है, जो इस फील्ड में है, म्यूजिक के फील्ड में है या एक्टिंग के फील्ड, किसी भी फील्ड में है, तो बदलाव तो आना ही है, मगर वो बदलाव भी अच्छे ढंग से आए तो बहुत अच्छा है,
0: सकारात्मक होना
1: चाहिए। करेक्ट करेक्ट, हाँ जी हाँ जी। तो उस बदलाव को हमको देखना है, सुपरवाइज करना है। अगर बच्चे कुछ कर रहे हैं, हमारा क्रिएटिव वर्क है कुछ, या जैसे मेरे म्यूजिक को लेके मैं बात करूंगी
0: जी,
1: कि जब कुछ नया गाना रिकॉर्ड होता है, जैसे अभी सलीम सुलेमान म्यूजिक डायरेक्टर्स है, म्यूजिक इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के वरिष्ठ संगीतकारों में से हैं
0: जी,
1: तो उनके साथ कश्मीरी फोक म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने, अपने मर्चेंट रिकॉर्ड्स उनकी म्यूजिक कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग म्यूजिक कंपनीज, उसमें कश्मीरी म्यूजिक को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो ओरिजिनल म्यूजिक भी रिकॉर्ड करते हैं। तो उनका भूमि एक एल्बम आता है हर साल
0: जी,
1: उसमें वो 10 गाने रखते हैं, और वो अलग अलग रीजन्स को लेके
0: बनाते
1: हैं, अलग अलग भाषाओं में भी होता है, और फिर क्लासिकल बेस्ड, डिवोशनल, हर तरह का गाना वो रिकॉर्ड करते हैं और रिलीज करते हैं। तो कश्मीरी फोक म्यूजिक को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो मेरा कहना ये है कि वो मॉडर्न स्टाइल भी है, और आज की यूथ जो है, जो उसको लाइक करे, उसके हिसाब से भी बना है, बट एट द सेम टाइम कश्मीरी गाना उन्होंने लिया है, जो मैंने अभी गाया आपके लिए, नाज़नीन यार मैं ये मुलाकात, ये पॉपुलर गाना रहा है कश्मीर का, ये सब जानते हैं ये गाना, तो काफी पुराना ट्रेडिशनल गाना रहा है, तो इसको उन्होंने ले लिया और कश्मीर से सिंगर को बुला के, एंड देन एक यंग बडिंग आर्टिस्ट राज पंडित, उसको लिया उन्होंने, और दोनों का कॉम्बिनेशन में ये गाना बन गया। जब गाना बना तो शुरुआत भी वैसी हुई, और धीरे धीरे धीरे धीरे उसका ग्राफ ऐसा बन गया गाने का कि गाना एज इट इज है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा गाने में, पर वो बनाने का जो तरीका था वो प्रेजेंट जनरेशन के हिसाब से, वो कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के हिसाब से बना है पूरा
0: जी,
1: बिकॉज वो रीजनल लोगों के लिए ही नहीं था, वो ग्लोबल लेवल पे वो भूमि एल्बम आता है
0: जी,
1: तो पूरे यूनिवर्स तक पहुंचती है वो चीज, पूरे ग्लोब में पहुंचती है वो चीज, जो उनका वो प्लेटफॉर्म है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूज प्रोडक्शन है उसकी, तो वैल्यू उसकी, तो उसमें वो गाना उन्होंने जब बनाया तो उसको इतना सुंदर तरीके से उसको एलोबरेट किया है म्यूजिकली, म्यूजिक ट्रीटमेंट जो उसमें है, आप सुनेंगे, आपने सुना भी होगा
0: जी।
1: तो वो लगता नहीं है कहीं दूर दूर से कि वो गाना खराब हुआ है या डिस्ट्रॉट हुआ है, हमारी भाषा को कुछ उधर उधर किया है, नहीं, बड़े प्यार से, बड़े सुंदर तरीके से उसको उन्होंने बनाया है, प्रेजेंट किया है। तो वैसे ही मैं चाहूंगी कि एक खूबसूरती के साथ अगर हम काम करें, आज की जनरेशन जो चेंजेस तो ला रहे हैं, लानी भी पड़ेंगी, बिकॉज उनकी सोच अब डिफरेंट है
0: जी।
1: वो होनी लाजमी है, उसमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए या हमको कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम बैलेंस होके करें, और उसमें बेसिक जब आप रखते हो साथ में, बेस जो हमारी ट्रेडिशनल म्यूजिक है, क्लासिकल बेस म्यूजिक है, अगर वो साथ में चलता रहे और उसको उसी ढंग से पेश किया जाए और नयापन भी रहे, ताकि दोनों जनरेशन, चाहे वो पहली जनरेशन हो या आगे की जनरेशन, अभी की जनरेशन हो, सब कोई उसको पसंद करे, तो वो एक बहुत अच्छा चेंज है, उसमें कोई गलत बात नहीं है।
0: आपने अभी भूमि एल्बम की बात की और आपने राज पंडित जी की बात की, आपके सुपुत्र हैं वो, संगीत के साथ जुड़े, एक माँ जब अपने बेटे को इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे देखती है तो वो क्या सोचती है?
1: मैं तो, वो हमारा तो यही रहा है कि बस उसने अडॉप्ट किया म्यूजिक को, बचपन से वो सीखता रहा। पहले वो तबले से शुरू किया, बाद में की पियानो से शुरू किया, बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे वो सिंगिंग तो कर ही रहा था, सीख ही रहा था, तो गुरुओं से सीखना शुरू किया। एंड देन इनके साथ संपर्क किया, संगीत सलीम सुलेमान जी, वो पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी, तो वो इसी माहौल में बढ़ता रहा। और मुझे कभी भी वो ऐसा नहीं लगता है कि भाई वो कहीं पहुंचा है हाई लेवल पे, या मुझे तो ऐसा लगता है बस अभी शुरुआत है, आगे बढ़ता रहे, और यही कोशिश रहती है कि अच्छा काम करे, आगे बढ़ते रहे, आशीर्वाद रहे सब बड़ों का, गुरुओं का आशीर्वाद रहे। मेरी तो यही रहती है थिंकिंग, मैं कभी भी वो सोचती नहीं हूँ कि मैं कहीं पहुंची हूँ, मेरा बेटा कहीं पहुंचा है, बस ये है कि यू फील प्राउड। प्राउड तो होता है, प्राउड इन नॉट इन दैट सेंस कि अब इसने फतेह पा लिया है तो फिर अब बस खत्म, इतना ही है। शुरुआत अच्छी है, वो बस ब्लेसिंग है और उसकी मेहनत है, हार्ड वर्क है। बिकॉज जब आप संगीत के इसमें जगत में जाते हैं, अगर कुछ पाना है तो उसके लिए जीना पड़ता है, उसी रंग में जीना पड़ता है, आपको काफी सारी चीजों का कंप्रोमाइज करके आपको उसी लय में रहना पड़ता है, तब जाके वो चीज अचीव होती है।
0: यानी
1: तो बस कोशिश जारी है, यही
0: यानी कि त्याग, समर्पण और निरंतर काम करना बहुत जरूरी है।
1: एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न करना चाहूंगा कि आज के युवाओं को
1: जी
0: आप क्या कहना चाहेंगे जो खास करके संगीत और गायन क्षेत्र में है?
1: बस यही है जो मैंने कहा कि अगर किसी को करना है, म्यूजिक में ही जाना है, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, एंड देन मेहनत, हार्ड वर्क और सीखना। सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जो एक अच्छे गुरु से आपको मिल सकती है
0: जी।
1: अच्छे गुरुओं के साथ उठना बैठना सीखना, तब आप इसको अचीव कुछ कर सकते हैं। देन उसके बाद जो गुरु ने सिखाया उस पे चलना, उस पे अमल करना, उसके साथ टच में रहना। मैंने अभी कहा कि जीना पड़ता है, तो संगीत को एक जीने की बात है, तो आपको बहुत उसमें समर्पण भाव से करना पड़ेगा, तब आप जाके आगे बढ़ सकते हैं, वो बहुत जरूरी है।
0: एक कलाकार के लिए विनम्र होना कितना जरूरी है, चाहे वो किसी भी कला का हो?
1: बहुत जरूरी है, वही तो चीज है, ऊपर वाला ही देता है ना, जो हमको देता है हमको, कहीं हम खुद से नहीं क्रिएट कर रहे हैं कुछ, जो भी हमारे, जैसे मैं गा रही हूँ तो मुझे अगर गला कुछ चल रहा है तो वो ऊपर वाला ही चला रहा है ना, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। जब वो चाहेगा तो वो गवाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं गवाएगा, कुछ भी मैं करूँ। तो जब तक आप उसके शरण में नहीं हो, समर्पण नहीं हो भगवान के, आप जिसको मानते हो उनके इसमें सरेंडर भाव में नहीं हो, तो तब तक नहीं होता है कुछ, तो बहुत जरूरी है।
0: अब हम बात करते हैं बेटियों की। हमारे समाज की नींव है बेटी, जब वो बाबुल का घर छोड़ अपने पिया के घर जाती है। इसके संदर्भ में आपने अपनी एक सीरीज साज कश्मीर में एक गीत गाया है
1: जी,
0: तो मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं के लिए आप वो सुनाएं और फिर हम इस कार्यक्रम का अगले सेक्शन में समापन करेंगे।
1: जी जी, ये एक बहुत ही सुंदर रचना है, नजीर दास जी कश्मीर के बहुत वरिष्ठ पोएट्स में से रहे हैं, उन्होंने लिखा है। तो जब मैंने इसके लिरिक्स सुने, किसी से मैंने सुने थे और मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया और वो अवेलेबल है यूट्यूब पे। और इसकी कंपोजिशन पंडित भजन सुपुरी जी की है। फोक बेस्ड कंपोजिशन है, बहुत पॉपुलर कंपोजिशन है, पंडित भजन सुपुरी जी की है।

0: निर्जा जी, हम भी नहीं चाहते हैं कि आप आज यहाँ से जाएं और आप जाने की जिद ना करें, पर समय जो है वो हमें इजाजत नहीं देता है। और आपसे अंत में ये जानना चाहूंगा कि आज आप पहली बार FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता के स्टूडियो में आए, आपको यहाँ आके कैसा लगा?
1: मुझे तो फखर महसूस हो रहा है, मैं सच्ची बोलती हूँ, बिकॉज कश्मीर से निकल के जिस जद्दोजहद से गुजर के आपने ये सेटअप बनाया है और अपना नाम कमाया है आपके काम में भी, और आपने इस क्रिएटिव फील्ड को यहाँ पे इस जगह पे अननोन जगह जो थी आपके लिए, बट ऑब्वियसली आपको बहुत सहायता भी मिली होगी जो यहाँ पे आपके लोकल्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, और गुरुओं का भी आपको संग मिला होगा, आशीर्वाद मिला होगा, तब जाके आपने ये सेटअप यहाँ पे डाला है और आपने शुरू किया है और बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे तो बम्बई में बैठ के बहुत खुशी महसूस होती है कि वितस्ता रेडियो, वितस्ता नाम जो रखा है आपने, हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ
0: जी।
1: वितस्ता बहुत ही एक प्रेशियस और बहुत ही एक ऐसा नाम है जो हमारे खून में बहता है
0: जी।
1: तो वो नाम से आपने रेडियो का शुरुआत की और चल रहा है इतने अच्छे लेवल पे, सक्सेसफुल लेवल पे, मैं मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ आके जो यहाँ की वाइब्रेशन है, लिटरली मुझे लगा मैं किसी मंदिर में अंदर आ गई हूँ, और आपका वो जो ऑरा है इस स्टूडियो का, वाइब्रेशन जबरदस्त पावरफुल, और क्योंकि आप खुद प्योर हो, आप खुद सिंसियर हो, ऑनेस्ट हो, डेडिकेटेड हो टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर आर्ट, आप खुद एक आर्टिस्ट हो, तो आपको पता है ये आर्ट क्या चीज है। आपका पैशन और आपका डेडिकेशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका जो आशीर्वाद है, जो आपके शब्द है, इनको हम संजो के रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस सफर पर हम चले हैं आखिरी सांस तक इस सफर को जारी रखेंगे। और अम्बाला के जनता के लिए हम पिछले 36 वर्षों से जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबका प्यार हमारे साथ बना रहेगा। निर्जा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा और मैं यहाँ बैठ के आपसे कुछ बातें कर पाई। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।
0: थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुफ्तगु एपिसोड 5। आज के आमंत्रित मेहमान थे कश्मीरी फोक, सूफी, गजल एवं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर श्रीमती निर्जा पंडित जी। सहयोग दिया किरणी दास ने, रिकॉर्ड, एडिट, निर्देशन एवं प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
3: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
4: और मैं हूं विकास शर्मा।
3: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
4: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
3: निर्माता है विकास शर्मा
4: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
3: ये गीत हम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना। Your reacts.

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: यू आर लिसनिंग FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विविधता, अंबाला केंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
2: तोशु बोजान FM 90.0 रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी हूं। बोजान रूजू पनीन पसंदीद बात।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
3: कर दिया मेरे ते जो सर्दिया तेरे नाल फुटवा कराउन जो।
1: रेडियो विदस्ता
3: असले पौन पटाके
1: सुन मेरे दिलदार। 90.0 मेगा

0: रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: मैं हूं वंश शर्मा, सिंगर सॉन्ग राइटर एंड कंपोजर। मेरा एक नया गाना नए साल के आगमन पर रिलीज हुआ है और ये सॉन्ग मैं FM 90.0 रेडियो वितास्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये सॉन्ग पसंद आएगा और आपका स्नेह और प्यार मुझे मिलेगा। और इस गाने में संगीत दिया है आरवी ने।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

0: تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔
1: آنکھوں

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 एफएम पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही दालच में, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: मोहब्बत के तराने गुनगुनाने आ गए हैं, हम अपनी सादगी से आपको रिझाने आ गए हैं। यहाँ सिर्फ सुर ताल और गाने ही नहीं बजते, हम तो दिलों के तारों को दिलों से मिलाने आ गए हैं। नमस्कार, प्रणाम और शुभ दिन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा और बेहद अजीज कार्यक्रम फरमाइशी गीतों का कारवां में। कहते हैं कि शब्द जहां खामोश हो जाते हैं, वहां संगीत सरहदें लांघकर रूह को छू लेता है। आज फिर हम लेकर आए हैं एक ऐसी हसी महफिल जहां सिर्फ सुर और साज नहीं सजेंगे, बल्कि आपकी धड़कनें और आपकी भावनाएं बयां होंगी। यहां सिर्फ गाने नहीं बजाए जाते, बल्कि आपकी अनकही बातों को, आपकी यादों को और आपके अपनों को दिलों से दिलों को जोड़ा जाता है। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी।
1: आज की इस सुरीली शाम को और भी यादगार बनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बेहद खास और दिलकश तिकड़ी,
2: जिनकी आवाज में कश्मीर की वादियों जैसी ठंडक और मखमली एहसास है। भारत जी जब माइक संभालते हैं तो शब्दों को एक नया मुकाम मिल जाता है। उनकी संजीदगी आज की महफिल में चार चांद लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है।
1: सुरों की मल्लिका और बातों में मिश्री सी मिठास घोलने वाली हमारी प्यारी कृष्णा, जिनकी मुस्कुराहट और बातों का अंदाज सीधे दिल में उतर जाता है। आज वो आपकी हर फरमाइश को अपनी खूबसूरत आवाज के जरिए एक नया रूप देंगी।
2: मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: और इस महफिल में आज एक नया ताजा और युवा झोंका जुड़ा है, हमारी नई इंटर्न नैना। नैना के पास आज की जनरेशन का नजरिया भी है और संगीत के प्रति एक गहरी उत्सुकता भी। उनकी चमचमाती ऊर्जा आज के शो को एक नया जोश देने वाली है।
1: मैं हूं आपके रेडियो दोस्त नैना, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: तो फिर देर किस बात की, दिल की खिड़कियां खोल दीजिए, अपनी यादों को आजाद कर दीजिए और अपनी भेजी हुई फरमाइशों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए। सिलसिला चाहतों का यूं ही चलता रहेगा, गीतों का ये मौसम हर पल बदलता रहेगा। जुड़ जाइए हमारे साथ इस रूहानी सफर में, क्योंकि दिलों से दिलों का राबता यही बनता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लाजवाब सफर आपके नाम और आपकी पहली फरमाइश के साथ।
2: लेती हूँ पहली फरमाइश जो हमारे पास आई है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता हैं विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा व डॉक्टर ईशानी। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मंचली का गीत। गीत के बोल हैं गम का फसाना बन गया अच्छा। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार और लीना चंद्रवाकर ने। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये पहला मधुर गीत।
3: गम का फसाना बन गया अच्छा।
4: अच्छा जी।
3: एक बहाना बन गया अच्छा।
4: अच्छा।

तो श्रोताओं, आपकी नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है नल्लेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, भेजने वाले श्रोता है पीएस नाहवकर। ये सुनना चाहते हैं फिल्म गोपी से गीत। गीत के बोल है अकेले ही अकेले चला है कहां। इस गीत को शुरू से संवारा है स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने। पीएस नाहवकर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता हैं निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर और साथ ही मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुरहेकर। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये पसंदीदा।

लेकर आई हूँ अगली फरमाइश, जो आई है कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म कर्तव्य से गीत। गीत के बोल हैं, छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला। इस गीत को आवाज दी है गायिका लता मंगेशकर जी ने। आइए सुनते हैं इन सब की फरमाइश।

पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है मुजफ्फरपुर बिहार से। भेजने वाले श्रोतागण हैं आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार और हैप्पी आनंद। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आंचल का गीत। गीत के बोल हैं भोर भये पंछी गाए, जिसको अपनी मधुर आवाज से सवारा है लता मंगेशकर जी ने। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये खूबसूरत सा नगमा।

आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है दयालबाग अंबाला कैंट से, और भेजने वाले श्रोता हैं हनी और अनिल। ये दोनों सुनना चाहते हैं फिल्म चाचा भतीजा का गीत। गीत के बोल है तेरे

अगली फरमाइश जो आई है अंबाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता हैं कैप्टन अमरजीत शर्मा, जो सुनना चाहते हैं फिल्म दुल्लारी से गीत। गीत के बोल हैं ए दिल तुझे कसम है। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आइए सुनते हैं कैप्टन अमरजीत शर्मा का यह पसंदीदा गीत।

पेश है अगली फरमाइश जो आई है धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोतागण हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म रात के अंधेरे में का गीत। गीत के बोल हैं, अगर बेवफा तुझको पहचान जाते। इस गीत को अपनी मधुर आवाज से संवारा है लता मंगेशकर जी ने और मुकेश ने। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये खूबसूरत सा गीत।

जी हाँ, आप सभी के लिए एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव कुमार हेडा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, भेजे वाले श्रोता है सईद मसरूर। इनके साथ अन्य श्रोता है शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सदाम और आदिब। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म असली नकली से गीत। गीत के बोल है एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। आइए, प्रस्तुत है इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

प्रस्तुत है अगली फरमाइश जो आई है समस्तीपुर बिहार से। भेजने वाले श्रोता हैं मीरा सिंह, ज्योति सिंह और रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह। यह सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जीवन मृत्यु से गीत। गीत के बोल है झिलमिल सितारों का आंगन होगा। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने और लता मंगेशकर जी ने। आइए प्रस्तुत करते हैं इन सभी का पसंदीदा गीत।

आइए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो हमारे पास आई है चंदनपुरी अंबाला छावनी से। भेजने वाले श्रोता हैं मदन गोपाल सैनी जी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म पुष्पांजलि का गीत। गीत के बोल हैं, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। इसे अपनी आवाज से सवारा है मुकेश जी ने, तो पेश है इनकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। जारी है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अगर आप किसी पुरानी हिंदी फिल्म का गीत, पंजाबी या हरियाणवी गीत सुनना चाहते हैं, आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर लिखिए। आपको लिखना होगा फिल्म का नाम या गीत के बोल और भेजना होगा हमारे नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही लेता हूं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता है लक्ष्मण राव लोखंडे। ये सुनना चाहते हैं फिल्म आया सावन जूम के से गीत। गीत के बोल है बदरा छाई के झूले पड़े। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने। लक्ष्मण राव लोखंडे के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षिता लोखंडे और पूरा लोखंडे परिवार। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

प्रस्तुत करते हैं अगली फरमाइश जो आई है डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता हैं सीताराम, ये सुनना चाहते हैं फिल्म सरगम से गीत। गीत के बोल हैं हम तो चले परदेश। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। आइए सुनते हैं इनका फरमाइशी गीत।

0: अब प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की आधी फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव झिंगोड़ी जिला यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोतागण हैं रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम और वीरेन। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सौतन से गीत, गीत के बोल हैं शायद मेरी शादी का ख्याल, जिसको अपनी मधुर आवाज से सवारा है लता मंगेशकर जी ने और किशोर कुमार ने। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये मधुर सा गीत। और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
1: मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरी ये पहली प्रस्तुति पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।
2: जी हां श्रोतो, आप हमें भी दीजिए इजाजत और मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये फरमाइशी गीतों का सफर पसंद आया होगा। जैसे हमने पहले कहा था कि हम दिलों को दिलों से जोड़ते हैं और आपकी भावनाओं को सभी तक पहुंचाते हैं। उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब हुए होंगे। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा और आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: शुक्रिया करम मेहरबानी दोस्तों, जिंदगी हसीन है

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: नब्बे अशारिया सिफर FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
4: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए मोहम्मद अजीज के दिल छूने वाले गाने हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत सफर का।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विद अ स्टार, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विद अ स्टार, हम सफर जिंदगी का।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: Your ex.
1: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
2: और मैं हूं विकास शर्मा।
1: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
2: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
1: निर्माता है विकास शर्मा
2: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
1: ये गीत हम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।
0: Your reacts.

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए।

दोस्तों बोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजन रोजियो पनिन पसंदीदा बात।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही दालच में, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 10। आज का ये कार्यक्रम संगीतकार रविंदर जैन पर आधारित है। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट किया भारत सोपोरी ने, प्रस्तुतकर्ता व निर्देशन आरजे किरनी का।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। नमस्कार प्यारे श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे संगीतकार की दुनिया में जिनके संगीत ने न केवल बॉलीवुड बल्कि हमारे दिलों में भी एक अलग जगह बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार रविंद्र जैन की, जिनकी धुनों में प्यार, भक्ति और संघर्ष की कहानियाँ छुपी हुई है। आज हम जानेंगे रविंद्र जैन के जीवन की उन पहलुओं के बारे में जिन्होंने उन्हें एक अमर संगीतकार बना दिया। तो आइए इस संगीत यात्रा में हमारे साथ जुड़िए।

रविंदर जैन सुप्रसिद्ध गायक, गीतकार, संगीतकार और संगीत निर्देशक थे, जिनका जन्म 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। इनके पिता इंद्रमणि जैन थे, जो कि संस्कृत पंडित और आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। इनकी माता किरण जैन गृहिणी थी। रविंदर जी के 6 भाई और 1 बहन थी। जब रविंदर जी का जन्म हुआ तो एक दिन बाद ही उनकी आंखें नहीं खुली। तब डॉक्टर ने सर्जरी के जरिए उनकी आंखें खोली, लेकिन उन्हें तब भी दिखाई नहीं।

रविंदर जी की शुरुआती शिक्षा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के ब्लाइंड स्कूल में हुई थी। 4 साल की उम्र में ही उनके पिता ने उनकी संगीत की शिक्षा की व्यवस्था की, जिसके लिए उन्हें मिनी हारमोनियम दिया। उन्होंने जीएल जैन, नथुराम शर्मा और जनार्दन शर्मा जैसे दिग्गजों से संगीत की शिक्षा ली। उसके बाद रविंदर जी अपने चचेरे भाई के कहने पर कोलकाता आ गए। वहां उन्होंने 10 साल तक संगीत की आगे की शिक्षा ली। कोलकाता में ही रविंदर जी ने 5 रेडियो स्टेशन पर ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें नकार दिया गया।

रविंदर जैन को पहली नौकरी बालिका विद्या भवन में 40 रुपए महीने पर मिली। इसी शहर में उनकी मुलाकात पंडित जसराज तथा पंडित मणिरत्नम से हुई। नई गायिका हेमलता से उनका परिचय हुआ। वे मिलकर बांग्ला तथा अन्य भाषाओं में धुनों की रचना करने लगे। हेमलता से नजदीकियों के चलते उन्हें ग्रामाफोन रिकॉर्डिंग कंपनी से ऑफर मिलने लगे। एक पंजाबी फिल्म में हारमोनियम बजाने का मौका मिला। सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुति के 151 रुपये तक मिलने लगे। इसी सिलसिले में वे हरिबाई जरीवाला संजीव कुमार के संपर्क में आए। वर्ष 1968 में राधेश्याम झुनझुनवाला के साथ मुंबई आए तो पहली मुलाकात पार्श्व गायक मुकेश से हुई।

0: रविंदर जैन का पहला फिल्मी गीत 14 जनवरी 1972 को मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड हुआ। रविंदर जैन ने अपनी संगीत यात्रा की शुरुआत 1974 में फिल्म कांच और हीरा से की, हालांकि उन्हें असली पहचान 1980 में आई फिल्म चांदनी से मिली। चांदनी का संगीत न केवल उस समय के दर्शकों के बीच हिट हुआ, बल्कि आज भी ये लोगों के दिलों में जिंदा है।
1: ओ हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से

0: गलियों से
1: दरवाजा खटखटाया, लगता है कोई आया।
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

हल्के संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक धुनों का अद्भुत मिश्रण था जो उन्हें बाकियों से अलग करता था। वह संगीत के ऐसे साधक थे जिन्होंने अपनी धुनों से फिल्म की कहानी को न सिर्फ सजाया बल्कि उसे जीते जी महसूस भी कराया। 1973 में आई फिल्म सौदागर के लिए रविंदर जी ने गाने लिखे और कंपोज भी किए जिससे उन्हें पहचान मिली।

1987 में रामानंद सागर के निर्देशन में बने रामायण सीरियल ने इन्हें अमर बना दिया। रविंदर जी ने लगभग 200 फिल्मों और रामायण, श्री कृष्ण, अलिफ लैला जैसे धारावाहिकों के लिए अपना संगीत दिया था।

रविंदर जैन जी ने कई हिट मूवीज और धारावाहिकों में अपने संगीत का जलवा बिखेरा। इस सूची में सौदागर, चोर मचाए शोर, चित चोर, अखियों के झरोखे से, राम तेरी गंगा मैली, हीना, विवाह एक विवाह ऐसा भी जैसे फिल्में रही। उन्हें संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक धुनों का अद्भुत मिश्रण था जो उन्हें बाकियों से अलग करता था।

रविंदर जैन का संगीत सिर्फ फिल्मी गानों तक ही सीमित नहीं था, उनके संगीत में आध्यात्मिकता की गहरी छाप थी। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उनके भक्ति गीतों ने भारतीय संगीत को एक नई दिशा दी। सत्यम शिवम सुंदरम जैसे गीत उनके जीवन और भक्ति के प्रति गहरे प्रेम को दर्शाते थे।

उनके भक्ति गीतों में एक अद्भुत शक्ति और शांति का एहसास होता था। इन गीतों ने उन्हें न केवल बॉलीवुड में बल्कि भारतीय संगीत के दूसरे क्षेत्र में भी एक महान कलाकार के रूप में स्थापित किया। जय हनुमान साईं बाबा जैसे धारावाहिकों में अपनी आवाज भी दी थी। रविंदर जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार आदि मिले थे। उन्होंने उजालों का सिलसिला नाम से उर्दू शायरी लिखी, जिसके लिए उन्हें 1997 में उत्तर प्रदेश हिंदी उर्दू साहित्य समिति से साहित्य पुरस्कार मिला।

9 अक्टूबर 2015 में शरीर के कई अंग खराब होने के कारण मुंबई में उनका निधन हो गया। इनके लिखे और गाए हुए गीत और भजन आज भी लोगों के दिलों और दिमाग पर छाए हुए हैं। रविंद्र जी ने साबित कर दिया कि अगर इंसान में टैलेंट और कुछ इच्छा कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी परेशानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।

आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने रविंद्र जैन के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उनका संगीत, उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा और उनके अनमोल धरोहर हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। रविंद्र जैन का संगीत न केवल उनके समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के दिलों में भी जीवित रहेगा। आपका धन्यवाद इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 10। आज का कार्यक्रम आधारित था संगीतकार रविंदर जैन पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट किया भारत सोपोरी ने, कार्यक्रम को लिखा, निर्देशन दिया और प्रस्तुत किया आरजे किरने ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, घर घर की आवाज, रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

चलते चलते तुम्हारी दुआओं का असर देखेंगे और सरी रहा अपने इंतजार को महफूज रखेंगे अपने महबूब के लिए, उस महबूब के लिए जो हरदम मेरे साथ मेरे पास रहता है मेरे साए की तरह। तुम्हारे कुछ ख्वाबों ने एक मुद्दत के बाद दिल में क्यों आज आस जगाई है कि तुम्हारी सांसें तुम्हारी धड़कनें मेरे आने वाले कल का नसीब है। हमारे हाथ भी उठते हैं अब तुम्हारी दुआओं में जब मेरे कारवां में तुम्हारा साया मेरे साए के हमराह इस रेतीले सफर में मील के पत्थर की तरह रह गुजर में शामिल तो होता है पर रूबरू नहीं होता।

उदासी भरे इन पीले पत्तों के मौसम में सिर्फ तुम्हारी यादें साए की तरह मेरे साथ साथ ही मेरे पास पास ही। परछाइयों के इस सफर में हमारे रास्ते पथरीले हैं, पर तुम्हारे हैं उम्मीदों से भरे। तुम्हारे लिए फिर सुबह होगी और हमारे नसीब में है हिजर की ढलती शामी। इन रेतीली हवाओं का रुख क्यों नहीं कोई मोड़ लेता है? क्यों नहीं कोई मुझे अपने दामन में पनाह देता है? मेरी चाहतों को हमेशा ये कौन दर्द का लिबास पहनाता है? क्यों कोई मुझे राहे रुस्वा छोड़कर यूं ही चला जाता है ये कहकर कि मैं लौट कर तुम्हारे ही पास आऊंगी जीने के लिए? ये मेरा ही कसूर था जो उदासी भरे इन पीले पत्तों के मौसम में मैंने तुम्हें चाहा है अपनी चाहतों की तरह। तुम्हारे आसमां में अपनी परवाज लिए बुलंदियों को छूने की आरजू की, तुम्हारे हाथों की लकीरों में

कुछ तू है जो बेवजह तुम मेरी जिंदगी में आकर मेरे मासूम ख्यालों को तन्हा कर जाते हो, और मैं तुम्हें सोचता रहता हूं देर तक कि तुम मुझे अपने आंचल में जो छिपाते, तो शायद मैं खुदा से जीने की आरजू करता, गुजारिश करता, मेरे एहसास को तुम संभालते, मेरी धड़कनों में मेरे साथ शामिल हो जाते, मेरे अधूरे सफर में मेरे हम सफर बन जाते, मेरी वीरानियों को तुम आबाद करते, मेरी राहों को तुम मुनव्वर करते, अपने सितम अपनी परेशानी मुझे दे देते, मगर ये हो न सका क्योंकि तुम्हें जाना था दूर किसी और की दुनिया में, जहां शायद उजाले तुम्हारी राहों को रोशन करने के लिए मुंतजर हैं, जहां पिंजरों में कैद परिंदे तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं अपनी आजादी के लिए, जहां ये बेजुबान पत्थर कुछ बोलने की फिराक में है, जहां ये अपनी खामोशी तोड़ने के लिए तरस रहे हैं, बेचैन हैं, मगर अब मुझे खुद को संभालने के लिए किसके हाथ उठेंगे मेरी दुआओं के लिए।

दोस्तों, फिल्मी गीतों का ये सफर आप तय कर रहे हैं अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। ये सफर जारी है। जब रिश्ते टूट गए तो फिर कल्पना क्यों करे, क्यों तुम्हारे बारे में सोचे। क्यों तुम्हारे दिए हुए तोहफे संभाल कर रखें, फिर क्यों ना हम तुम्हारे लिखे हुए खत जलाएं, तुम्हारी दी हुई निशानियां इन पानियों में बहा दें, तुम्हारे घर तक जा रहे इन रास्तों को भूल जाने की कोशिश करें। जब ये रिश्ते टूट गए तो फिर हम क्यों उजालों का इंतजार करें। क्यों न गुप अंधेरों में गुम हो जाए, तन्हा चले चले बचपन के आगोश में, मिट्टी के खिलौनों से टूटी दीवारों को सजाएं, रंग बदलती दुनिया की तस्वीरों को आखिरी बार। आखिरी बार अपने कैनवास पर उतारने की कोशिश करें। शायद इस बार मैं एक पायदार तस्वीर बनाने में सफल हो जाऊं।

यही वो जगह है जहां हम मिले थे कभी। सब कुछ अपनी जगह बरकरार है, कायम है। हाँ, ये चिनार तब बहुत छोटा था, पर अब इसकी शाखाएं आसमां से बातें करने लगी हैं। इसकी नर्म नाजुक परछाई में बिछे मखमली घास पर करवटें लेने को दिल कर रहा है, क्योंकि ये जगह आज भी वैसी ही है जैसे पहले कभी हुआ करती थी, जहां सुनहरी शामों से पहले आफ्ताब का मंजर हमारी सांसों को ताजगी बख्शता रहा। ये हवाएं हमारी रूहों को अमन सुकून से नवाजती रही। ये पानी अमृत से कम नहीं। यहां इन परिंदों की मीठी मीठी बोली सरगम की तान छेड़ती थी, और हर कोई अपनी आवाज इनकी बोली से मिलाया करता था, ताकि यहां का माहौल संगीतमय हो। बदला अगर है कुछ तो वो है सिर्फ हमारा अतीत, हमारा बचपन, जो शायद कभी भी लौट कर नहीं आ सकता।

आज के लिए बस इतना ही। ये सफर आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। हम बात करते हैं वो जो रखती है आपसे सरोकार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपको आज के खास विषय पर आपसे बात करेंगे और देंगे कल के कार्यक्रमों का विवरण और एक खास जानकारी अगले शुक्रवार के लिए। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:02 और 27 सेकेंड। श्रोताओं, अगले शुक्रवार यानी 3 जुलाई 2026 को हम कार्यक्रम भगवद गीता जीवन का आधार का एपिसोड 3 ला रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं गीता उपदेश की और हमारे जीवन में गीता का जो सार है वो किस तरीके से हमारे जीवन को सुदृढ़ और अच्छा बनाता है, इस विषय में बात करेंगे। और इस शो में हमारे साथ होते हैं खास मेहमान जो गीता परिवार के साथ बहुत समय से जुड़े होते हैं, और उनसे हम प्रश्न भी पूछेंगे और आपके मन में जो जिज्ञासा है उन प्रश्नों के उत्तर भी खोजने की कोशिश करेंगे। और साथ में आप कॉल भी कर सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर, ताकि हम अपने उस शो के मेहमान के साथ आपकी बात भी करा सकते हैं। यह कार्यक्रम लाइव होता है हमारे रेडियो विदस्ता के फेसबुक पेज पर और साथ ही इस सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz पर भी। ये थी जानकारी अगले शुक्रवार के कार्यक्रम की। श्रोताओं, सुरेले गीतों, मीठी बातों और यादों का जो कारवां आज सुबह शुरू हुआ था, अब वक्त हो गया है कि उस पर आज के लिए विराम लगाया जाए। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा स्टेशन FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त भारत सोपोरी। श्रोताओं, आज का दिन हम सबके लिए बेहद खास और गौरवपूर्ण है। आज 1 जुलाई 2026 को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। ये विशेष दिन महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को श्रद्धांजलि देने और चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के अमूल्य योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। ये दिन हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? देखा जाए तो एक डॉक्टर का हमारी जिंदगी में किरदार सिर्फ दवाएं लिखने तक सीमित नहीं होता है। जब इंसान बीमारी और दर्द से टूट रहा होता है, तब डॉक्टर ही उम्मीद की वो किरण बनते हैं जो हमें दोबारा जीना सिखाती है। कोरोना काल से लेकर रोजमर्रा की हर छोटी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी तक ये डॉक्टर अपनी जान, अपने परिवार और अपने आराम की परवाह के बिना 24 घंटे हमारे सेवा में तैनात रहते हैं। भगवान के बाद अगर किसी को जिंदगी बचाने का दर्जा दिया गया है तो वो डॉक्टर हैं। आज का ये दिन हमें मौका देता है कि हम उनके इस निस्वार्थ त्याग, उनकी रातों की नींद और हमारे प्रति उनके समर्पण को दिल से धन्यवाद करने का है। रेडियो वितस्ता की पूरी टीम की तरफ से देश के सभी डॉक्टरों को प्रणाम और हैप्पी डॉक्टर्स डे। ये था आज का विषय, और आप सभी के लिए मैं आखिर में कुछ पंक्तियां लाता हूं। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि हम आज के इस सफर को यहीं थामें, ताकि कल सुबह फिर एक नई ताजगी के साथ आपसे मुलाकात हो सके। चलते चलते अम्बाला की इस खूबसूरत शाम और आप सभी प्यारे श्रोताओं के नाम हमारी ये विशेष विदाई शायरी। पंक्तियां यूं है, हवाओं में गुली है अंबाला की ये मीठी सी फिजा, हवाओं में गुली है अंबाला की ये मीठी सी फिजा, हर दिल को सुकून देती है रेडियो वितस्ता की सदा। आज का सफर थम रहा है पर यादें जिंदा रहेंगी,
आज का सफर थम रहा है, पर यादें जिंदा रहेंगी, कल फिर मिलेंगे लेकर चाहत और अपनों की दुआ। कल फिर मिलेंगे लेकर चाहत और अपनों की दुआ। ये था आज का विषय और आज की पंक्तियां। जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण जल्दी से देता हूं। कल 2 जुलाई 2026 बृहस्पतिवार को हमारी सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर। वंदे मातरम से हम शुरुआत करेंगे, लाएंगे आपके लिए एक सुविचार और साथ में पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन पंचांग के साथ। 6 भक्ति संगीत, 7:05 पर कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 8। ये कार्यक्रम तैयार किया गया है कविताएं और गजलें जो लिखी हैं माधवी गणवीर जी ने। पेश करेंगे भारत सोपोरियो। 8:30 सकारात्मक कहानियों का समय होता है। कल एपिसोड 25 होगा, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये कहानी आप तक लेके आएंगे नरेश शर्मा। 9:30 पहलू और गीत एपिसोड 13, शीर्षक होगा जिंदगी के हसीन लम्हे। पेश करेंगे आरजे किरणी और 10:05 पर कार्यक्रम सुनहरे पल, महेंद्र कपूर पर तैयार किया गया कार्यक्रम। संगीत की सभा जारी रहेगी। 2 आप सुनेंगे साइबर अपराध पर तैयार किया गया एपिसोड, ताकि आप जागरूक रहें, आप सुरक्षित रहें। 6 भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल, 7 सुनहरे पल एपिसोड 13, साहिर लुधियानवी पर तैयार किया गया कार्यक्रम। पेश करेंगे आरजे किरणी और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है सफर रूहों का। उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, डॉक्टरों की सलाह मानिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हर दिन सुबह 6 से 9 तक। आज के इस खूबसूरत प्रसारण को यहीं विदा करते हैं और इसकी सुरीली समाप्ति करते हैं भारत सोपोरी के प्यार भरे नमस्कार के साथ। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभरात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।